मौला सामिन कराम, ये सदाए तुर्की है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 अगस्त बरोज इतवार है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। आप हमारे नशरियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुर्कसैट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट सेटेलाइट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम फ़िलिस्तीन की तारीख और पस पर्दा कहानियाँ और शोरश ज़दा अफ्रीका पेश किए जाएंगे। आज हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रहे हैं गोखान पोलाद और आपका मेज़बान सगीर अहमद।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइल के सरकारी नशियाती इदारे काम के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबरा जनरल ब्रैड कूपर ने ईरान और महसूर गजा से मुतालिका पेशरफ पर सीनियर फौजी हुकाम से बातचीत के लिए इसराइल का एक मुख्तसर दौरा किया है। कूपर बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले इजलासों के बाद इसराइल पहुंचे, जिनका मकसद इलाकाई तनाव को कम करना था, क्योंकि हालिया फौजी तसादुम के बाद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। गजा में शहरी दिफा की टीमों ने 4 रोज की तलाश के बाद गजा शहर में एक तबाहशुदा रिहायशी इमारत के मलबे से 19 फलस्तीनियों की बाकियात निकाल ली हैं। इसके बाद टीमें दूसरे मकाम की तरफ रवाना हो गईं, क्योंकि इसराइल की नस्लकुशी की जंग के दौरान तबाह होने वाली इमारतों के नीचे मजीद लाशें दबी हुई हैं। शहरी दिफा का कहना है कि बहाली और लाशें निकालने का काम इंतहाई महदूद वसाइल के साथ किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक खुदाई करने वाली मशीन, एक बुलडोजर और ट्रक शामिल है। नागासाकी ने इतवार के रोज शहर पर अमरीकी एटम बम गिराए जाने की 81वीं बरसी मनाई। यह बरसी एक ऐसे वक्त में मनाई गई है जब मुल्क में दरीना अमन पसंदाना मौकफ को चैलेंज करते हुए जौहरी हथियारों पर नई बहस शुरू करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। नागासाकी के मेयर शिरू सुजुकी ने जुनूब मगरबी शहर में हमले की सालाना यादगारी तकरीब के दौरान अमन का ऐलानिया पढ़ते हुए कहा कि जौहरी हथियार कोई लाजमी बुराई नहीं बल्कि एक मुतलक बुराई है और ये इंसानियत के साथ कभी बकाए बाहिमी के साथ नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म सानाए ताकाइची ने गुज़िश्ता जुमेरात को हिरोशिमा की यादगारी तकरीब में दिए गए अपने पैगाम को दोहराया कि जापान अपने तीन गैर जौहरी उसूलों को बरकरार रखे हुए है। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:02 पर खामोशी अख्तियार की गई। ये वो वक्त था जब अमरीकी बम्बार तैयारे ने फैटमैन नामी प्लूटोनियम आला गिराया था, जो नागासाकी पर धमाके से फट गया था। यह यादगारी तकरीब एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा और रूस यूक्रेन जंग दुनिया को हिला रही है। सुजुकी ने जौहरी ताकतों और जौहरी रोकथाम पर इन्हिसार करने वाले ममालिक को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की जंग के बढ़ते हुए खतरे से खबरदार किया और निशानदेही की कि अब भी 12,000 से ज़्यादा जौहरी वॉर हेड्स मौजूद हैं। उन्होंने मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन के तनाज़ात पर तशवीश का इजहार किया, जहाँ जौहरी ताकतें रूस और अमरीका मुलविस हैं। तकायची ने कहा कि इस अहद के तहत के नागासाकी जौहरी हमले का शिकार होने वाला आखिरी मकाम रहे और जंग में जौहरी तबाही की हौलनाकी का तजुर्बा करने वाले वाहिद मुल्क की हैसियत से जापान ऐसे हथियारों से पाक दुनिया के क़याम के लिए हकीकत पसंदाना और अमली कोशिशों को फ़रोग देगा। उन्होंने मजीद कहा कि एटमी बम्बारी के हकायक के बारे में दुनिया भर में दुरुस्त समझ बूझ को फ़रोग देने की अहमियत रोज़ बरोज़ परवान चढ़ती जा रही है। दूसरी जंग अजीम के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर होने वाले बम धमाके में साल के आखिर तक अंदाजन 1,40,000 मुतासरीन हलाक हुए थे, जबकि 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर गिराए गए एटम बम से अंदाजन 74,000 अफराद लुकमा अजल बने। जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिया, जिससे दूसरी जंग अजीम का खात्मा हो गया था। और कैनेडियन हुकाम ने ब्रिटिश कोलंबिया में तेज़ी से फैलने वाली जंगल की आग के बायस 20,000 से ज़ायद अफराद को निकालने पर मजबूर होने के बाद हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला डेविड एबी ने कहा कि घरों और इमलाक का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और हालात में तेज़ी से तब्दीली की वजह से कुछ लोग महसूर होकर रह गए हैं। इत्तलात के मुताबिक शोलों के आगे बढ़ने पर एक ही इलाके से 50 से ज़ायद अफराद को हवाई जहाज़ के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।